0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल। दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: हमारा नाम अजय।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तेरी मेरी कहानी।
1: ओके सर, सुना रहे हो आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो।
1: हाँ दीदी, राधे राधे।
0: राधे राधे दीदी, नाम क्या है आपका?
1: अदौन बाड़कला से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: फिल्म का नाम है शेषनाग गाने के बोल है, हमें आसमान से भेजा इस जहान में, आओ एक दूसरे से प्यार करें।
0: ओके दीदी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।
1: थैंक यू दीदी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: मैडम
3: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
2: मैं मऊ कला से बोल रहा हूँ, रतन लाल।
3: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: ये तो बहुत दिनों में आवाज आई आपकी।
3: हाँ जी, अभी आपको याद ही कर रही थी। कल परसों भी सोचा था, आपका फोन तो आया था, परसों आपके पोते उठाते हैं, बात करते हैं, काट देते हैं, ना फरमाइश देते हैं, हंस के हंसते हैं, बोत देते हैं और काट देते हैं। मैंने कि भाई आज तो दादा का फोन ले लिया बच्चों ने हाथों में।
2: अच्छा अच्छा।
3: वो ब्राट तो बोलता ही नहीं है, वो तो पहले तो बोल देता ब्राट, अब नहीं बोलता है।
2: अच्छा।
3: हाँ, अब तो गाना नहीं बताता, हंस के और काट देता है, बस बात करके थोड़ी बहुत और काट देता है। क्या ना, ऊपर नीचे कोली आती है इससे।
2: मैं तो बहुत दिन से, 4-5-6-7 दिन से वो ऋषि साहब ही उठाते हैं फोन आजकल, तो आपकी तो आवाज
3: लेते हैं। नहीं, वो रिकॉर्डिंग लेते हैं, मैं कंप्यूटर पे बैठती हूँ, वो बैठ जाते हैं उधर रिकॉर्डिंग लेते हैं उनको।
2: और साहब बढ़िया हो ना?
3: हाँ सर ठीक है। और आप कैसे हो?
2: बस आपकी दया, फर्स्ट क्लास, आपका इंतजार।

0: हेलो।
1: हाँ सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: नमस्कार, नाम बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा
0: नाम? दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी
0: मोहब्बत।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: विश्वास गुर्जर।
1: कहाँ से बात कर
0: रहे हो?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: राधे राधे मैडम।
1: राधे राधे सर, नाम क्या है आपका?
0: रोहित।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: आदर्श नगर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: किसी और के घर पे क्यों मेरा चांस होता है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: क्या कर रही हो तुम? हाँ याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था।
1: ये क्या बचपना है, मेरी शादी हो रही है।

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते मैम।
1: सर नाम क्या है आपका?
0: आशाराम जगह।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला के पास।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आ रहा हूँ बाबा पर तू तेरा भरोसा है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: काम के आया। हेलो
1: हेलो
2: क्या भरोसा है
0: ओके सर सुन। हेलो
3: हेलो बहन जी नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
3: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू केरा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो।
3: धन्यवाद
0: के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम मैम शबनम बानो।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: कोटा से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: संदेश से आती है के घर का बाबू, मेरे बेटे के लिए गाना सुनना है। मेरे बेटा आती है फोर्थ में।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है मैम।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज जो गीत सुनना है, पिक्चर का नाम है वारिस और गीत के बोल है घटा छा गई बाहर आ गई।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। यह गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत

0: हाँ सर नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: नाम है मंजूर अली खान।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? सिटी से मैम।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना मैम वो है गुलाम मुस्तफा का, वो मुबारक तुझे हम लोगों को मिल गया।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
1: Radio DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
0: हाँ जी, योगेश जांगड़े छत्तीसगढ़ से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: फिल्म दामिनी से सुनवा देंगे, बिनु साजन झोला झूमे।
1: वो किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:04 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मैम गौरव सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैम मिर्जापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैम मेरे महबूब कयामत होगी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

0: नमस्ते मैडम।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: लतीफ अहमद रैना, कश्मीर से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज कोई भी सुनाइए तलत अजीज की आवाज में।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: जम्मू से केशव शर्मा जी।
0: जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: आज नदी मगे सड़क फिल्म का गाना है, देखे जमाने के रंग हजार।
2: देखे जमाने के रंग हजार, नहीं कोई सिवा प्यार के।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करिए गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: चौधरी, निवेदन कर रहा हूँ हारवी जी।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना है दीदी चूड़े वाली छानिया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। सर ये गाना

0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: शू महिमा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मैं उमियर।
0: कहाँ से बात कर रही
1: हूँ?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तो ये
0: ओके सर, सुना रही हूँ आपकी फरमाइश।

0: सिंगर तो बढ़िया, आजकल गायब पता नहीं कित हो गया।
1: गायब तो कहीं नहीं हुआ है बेटा, पर बस इसे लोग पहचानते नहीं।
0: राव पागल, अरे साले चल रे, छोड़ यार, क्या छोड़ छोड़ सुन, मार मत देगा तुझे, जा भाई।
2: फटाफट रेडी करो यार, लेट हो रहे हैं। लाइट रेडी करो यार, क्या हो रहा है यार?
3: हेलो,

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: गौरव बेरवा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: जयपुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: उक्का बार अक्षय कुमार का।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आशीष शर्मा, एक पर ये गाना।

0: जी नाम क्या है आपका?
1: निकिता।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दुनिया मांगे अपने मना ले।
0: ओके मैम।

0: हेलो
1: जी,
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: आप बेदर क्या से बोल रहा हूँ मैडम?
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाने के बोले आपके आ जाने से दिल बहल जाता है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते। नाम क्या है?
0: नमस्ते जी, नमस्ते। मैं राइन किशोर शर्मा बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैं बालाजी चौक गंगापुर सिटी से बोल रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गाना है फिल्म गजब है पुरानी, ये हवा ये बता, ये घटा ये बता।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: अमित कुमार मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैं प्यार दिलों का मेला है सुनना चाहता हूँ।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना
0: मैम। थैंक यू।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।

0: नटका दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: कहाँ से बात कर रही
1: हूँ? कौन से
2: गाना सुनना चाहोगी?
1: तेरी दीवानी।
2: ओके, से सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना।
3: ऐसी लागी

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कानू।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: शेके शेके।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपके।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
3: पे रेडियो DS।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज।
4: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
5: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
6: DS साइंस एकेडमी, जहाँ पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

0: हेलो।
1: हाँ
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: फूला देवी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मिर्जापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: क्या चीज है तुम, मुझे तुम्हें मालूम नहीं।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हाँ मैम।
0: हाँ जी,
1: कुमार बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मिर्जापुर गंगापुर सिटी से, विजय कुमार खटनावलिया।
0: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं मिले।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिगाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।
0: वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: खुशी।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: जयपुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: चांदनी रात में गोरी चला
1: रही। मैम सुना रही हूँ आपकी फरमाइश करिए।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सोनल।
1: कहाँ से बात करें?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हेलो,
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैं जहाँ भी रहूँ बस गाना मिले।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेरा रे रा, हेरा रे रा।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेरा रे रा, हेरा रे रा।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: साथ है।
1: गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 1:00। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलो। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं पूनम शर्मा गंगापुर सिटी से, स्वागत है रेडियो डीएस 89.6 पर हमारा विशेष कार्यक्रम ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, चुनौतियों से संघर्ष तक। आज हम बात करेंगे हमारे समाज की उन महिलाओं की जो दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन अक्सर उनकी मेहनत को वह पहचान नहीं मिलती जिसकी वे हकदार हैं। आज का विषय है हमारा ग्रामीण महिलाओं की चुनौतियाँ। दोस्तों, ग्रामीण महिलाएं भारत की असली ताकत हैं। वे खेतों में काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, पशुपालन करती हैं और परिवार की हर जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन उनके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां बहुत हैं। जैसे ग्रामीण महिलाओं को घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। वे सुबह से रात तक लगातार काम करती हैं, लेकिन कई बार उनके काम को महत्व नहीं दिया जाता। शिक्षा और जागरूकता की कमी, कई कामों में आज भी लड़कियों की पढ़ाई जल्दी बंद कर दी जाती है, उनको मौका नहीं दिया जाता है पढ़ने का। अशिक्षा के कारण महिलाएं अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी से भी दूर रह जाती हैं। यदि आज महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे अपने परिवार और समाज को बेहतर दिशा दे सकेंगी। इतना जैसे कि स्वास्थ्य और पोषण की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पर्याप्त पोषण जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वे परिवार के बाकी सदस्यों का तो ध्यान रखती हैं, लेकिन खुद के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। कई महिलाओं को समय पर इलाज भी नहीं मिल पाता। फिर है अपना जैसे कि आर्थिक निर्भरता की हम बात करें तो ग्रामीण महिलाएं मेहनत तो बहुत करती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से दूसरों पर ही वो निर्भर रहती हैं। यदि उन्हें रोजगार, प्रशिक्षण और छोटे व्यवसाय के अवसर मिले तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह जैसी समस्याएं मौजूद हैं। कम उम्र में शादी होने से लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर भी प्रभावित होते हैं। फिर आता है अपना जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा है, तो ग्रामीण महिलाओं को कई बार सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना बहुत जरूरी है। डिजिटल दुनिया से भी आज वह बहुत ज़्यादा दूर है। आज दुनिया डिजिटल हो रही है, लेकिन कई ग्रामीण महिलाएं अभी भी तकनीक से बहुत दूर हैं। यदि उन्हें मोबाइल और इंटरनेट की सही जानकारी मिले तो वे शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पा सकती हैं। स्वयं सहायता समूह बदलाव की शुरुआत की जाए तो आज कई गांवों में महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर छोटे व्यवसाय चला रही हैं, जैसे कोई सिलाई कर रही है, कोई डेयरी चला रही हैं और कोई हस्तशिल्प का काम भी कर रही हैं। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। फिर इसमें अपने परिवार का सहयोग भी बहुत जरूरी है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए परिवार का सहयोग बेहद जरूरी होता है। अगर परिवार साथ दे महिलाओं का तो बेटियां और महिलाओं को शिक्षा और अवसर देगा तो समाज तेजी से बढ़ेगा। ये अवसर अगर उन्हें घर के सपोर्ट से मिलें तो समाज में ये बदलाव बहुत जल्दी आएंगे। समाज की सोच बदलनी होगी। दोस्तों, महिलाओं को कमजोर समझने की सोच बदलनी होगी। ग्रामीण महिलाएं मेहनती, साहसी और जिम्मेदार होती हैं। जरूरत है उन्हें अवसर और सम्मान देने की। धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।
2: हेरा रे रा, हेरा रे
1: रा। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेरा रे रा, हेरा रे रा।
3: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: तो वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों 3:50 का समय हो चुका है। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज करा है, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 99.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेरा रे रा हेरा रे रा।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस अकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस अकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
1: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 99.6 रेडियस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेरा रे रा, हेरा रे रा।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेरा रे रा, हेरा रे रा।
3: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 पर, और अब थोड़ी ही देर में सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:30 का और आपका मन पसंद कार्यक्रम लेके आ रही हूँ हेलो फरमाइश।
5: नमस्ते सर
6: जी। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
5: नाम ये जो डेली बताता हूँ।
6: हाँ जी, नाम क्या है?
5: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ।
6: सर, कौन सा गाना सुनना चाहो?
5: और गाना लिखो, गाना एक सेकंड का भी नहीं चलेगा। मुझे रब जो कहे तुझे छोड़ दो।
6: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: कर जन्नत अता।
1: हेलो
2: आदरणीय दीदी सर नमस्कार।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
2: जी मैं आपका वही जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आपको बताना चाहता हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय ऊंट दिवस मनाया जाता है 22 जून को और 2026 को जो है ऊंट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऊंटों के संवर्धन संरक्षण और इसके महत्व को बताने के लिए वर्ष मनाया जा रहा है ऊंट वर्ष। और ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, विषम परिस्थितियों में सांस निभाता है और कई दिन तक इसको भोजन पानी और मस्त रहता है और किसी प्रकार कोई दिक्कत महसूस नहीं करता, अपने साथी का साथ निभाता है। आज दीदी इसी कि ऊंट के ऊपर एक गाना है, ऊंट वाली से जो करो यारी मोरे राजा, ऊंचा करो घर का दरवाजा। ये प्यारा सा

0: तुम्हारी मान छुरी पर हो जा तू कुर्बान।
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
2: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
2: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: लाल चुनरिया वाली पे दिल आया है।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन आपका।
2: जी वेलकम सर।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: साबिर बोल रहा हूँ दशहरा मैदान से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना है तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूँ।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: कल आपने जो रहेगा
1: हेलो
0: हेलो
1: जी सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: बाबू खान नाम है, गंगापुर सिटी से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन, मेरा मन।
1: ओके सर, तुम्हारे

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अमन मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सांसड़ा से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मासूम शर्मा का एक खटोला वाला।
0: ओके सर, सुना रहे मासूम शर्मा इस पर गाना। हेलो,
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम सुनील कुशवाहा है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: महाराष्ट्र।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: पल पल जीना मुहाल।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मोहम्मद के।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: वासुदेव शर्मा।

दोस्तों वक्त हो चुका है 5:05 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो।

0: जाओगे?
1: ला वाला
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, हेलो, क्या है आपका?
2: पिंकी,
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: देख

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव, एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
1: Radio DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना है ओ बेदर्दिया. लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन प्रीतम ने, और मुझे भी गाना गाने का मन कर रहा है. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे. अगर आज आपका बर्थडे तो बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू. लेकिन क्या आपको पता है कि बर्थडे केक का कॉन्सेप्ट कहाँ क्रिएट किया गया था? किसी जर्मनी के बंदे ने पहली बार आज से 200 साल पहले बर्थडे केक काटा था. और दुनिया में हर रोज 15 मिलियन लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यानी 1.5 करोड़ लोग आज बर्थडे सेलिब्रेट करें. उनमें से अगर आप हो तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे. फिलहाल बैक टू बैक 4 गाने सुनो 89.6 रेडियो DSP.
0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: ऊर्जा काले कावा गाना सुना आपने उदित नारायण की आवाज में, अलका याग्निक जी की आवाज में, लिरिक्स लिखा आनंद बख्शी ने और कंपोजिशन उत्तम सिंह के द्वारा, लेकिन इस गाने को रिक्रिएट और रीअरेंज किया मिथुन ने। सुबह के 9 बज के ऊपर हो चुके हैं भैया और अभी तक दांत खिटखिटा रहे, ठिठुर रहे हो ठंड में। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी है तो भैया क्या कर रहे हो, ठंड आ चुका है, विंटर्स आ चुके, दौड़ने जाओ, जिम ज्वाइन करो, बैडमिंटन खेलो और फिलहाल गाने सुनो। बैक टू बैक 4 गाने आपके लिए रेडियो DS89.6 पे।
0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव लाने की जो प्रेरणा होती है ना, हमारे आसपास के लोगों से ही मिलती है। मैं हूँ आरजे खुशी। हर सुबह की तरह आज भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने जीवन को थोड़ा सा बेहतर बना सके, और इसकी शुरुआत होती है आज से, अभी से, इस पल से। तो क्या किया जाए आज ऐसा कि हमारा पूरा दिन बेहतर हो सके? देखो, हो सकता है कि आप अपने आप में अच्छे बदलाव करना चाहते हो, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा ना हो जो आपके उन बदलाव में आपका साथ देना चाहता हो, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आपके पास में कुछ और हो ना हो, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल फोन जरूर होगा, और उस मोबाइल फोन में इंटरनेट भी होगा, और उस इंटरनेट पे अगर आप कुछ अच्छे वीडियोस देखने शुरू करेंगे, कुछ अच्छी कथाएं सुननी शुरू करेंगे, कुछ पॉजिटिव चीजें सुननी शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो अब से हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे आसपास की जो स्थिति है वो विपरीत है। हमारे पास में कुछ होना हो, मोबाइल फोन तो है ही ना। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: कॉफी आप में से कितने लोगों को पसंद है? मैं हूँ आरजे खुशी। शायद बहुत सारे लोगों को पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम कॉफी ज्यादा पीते हैं ना, तो हम परेशान से हो जाते हैं। उसमें जो कैफीन होता है वो एंग्जाइटी बढ़ाता है, यानी कि हम चीजों को ज्यादा सोचने लगते हैं और जबरदस्ती ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, यानी कि एक ही बात को बहुत ज्यादा सोच सोच के खुद में ही परेशान होने लग जाते हैं। जी हाँ, कॉफी में एक ऐसी चीज है जो इस चीज को भी पैदा कर देती है हमारे अंदर। लेकिन कॉफी भी पीनी है और खुद को अच्छा भी फील कराना है तो क्या करें, उस कॉफी में एक चम्मच घी डाल दें। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि घी कॉफी आजकल बहुत चलन में है। इससे होता क्या है, जो कॉफी में कैफीन होता है ना, जो एंग्जाइटी बढ़ाता है, जो थोड़ा सा हमें परेशान कर देता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो आप कॉफी को भी एंजॉय कर पाते हैं और उसकी जो बुरी चीजें हैं उनसे भी दूर हो जाते हैं। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: Now Magic Radio DS 89.6।
1: इस सीजन में यानी कि सर्दियों में अगर आपने फल खा लिए ना तो पूरा साल आपका बहुत बढ़िया जाएगा। मैं हूँ आरजे खुशी। सर्दियों में इतनी सारी सब्जियां मिलती हैं, इतने सारे नए नए फल आते हैं और इनको हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फलों की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वहीं से हमें जो जरूरी तत्व होते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो मिलते हैं। और मान लीजिए कि आपका शरीर का वजन जो है वो 60 किलो है तो कम से कम आपको दिन के 600 ग्राम फल खाने ही खाने चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। इसलिए अगली बार जब भी फल कोई आपके सामने आए तो उसको मना ना कीजिएगा, एक बार सोचिएगा कि क्या ये फल मैं आज खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। तो अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मैं हूँ आरजे खुशी, अभी के लिए यहाँ से चलती हूँ, मिलूंगी कल इसी पते पर इतने ही बजे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
0: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

0: मैजिक रेडियो
1: DS 89.6
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में हम बात करने वाले हैं फिल्मकार मुजफ्फर अली जी की, जिन्होंने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और कुछ कला फिल्म्स भी उनके खाते में दर्ज है। 1978 की फिल्म गमन के जरिए उन्होंने सिनेमा जगत में कदम रखा। इस फिल्म के संगीतकार थे जयदेव जी। आइए इसी फिल्म के कुछ अनोखे गीत सुनते हैं। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर

0: 99.6 DSFM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी तनीषा को। अभी जो गीत आपने सुना, रात भर आपकी याद आती रही, ये गाना छाया गांगुली जी की आवाज में है। इस फिल्म में जयदेव साहब जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार और छाया गांगुली जी को सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। लौटूंगी यही 89.6 DSFM पे, मैं तनीषा।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। 1982 में आई फिल्म अर्थ के सारे गीत बहुत ही रोचक और लोकप्रिय हैं। जगजीत सिंह की रूहानी आवाज में फिल्म अर्थ के खूबसूरत गीत आपके लिए बैक टू बैक। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
1: गंगापुर सिटी की धरती।

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। 1983 में शेखर कपूर की पहली फिल्म मासूम, जो अपनी कहानी को लेकर तो मशहूर थी ही, लेकिन उसके गाने भी अभी तक सभी की जुबा पे हैं, जिन्हें RD बर्मन जी ने अपने संगीत से सजाया है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
1: गंगापुर स्थिति की धरती पर

0: Thank you, Father. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज कोई मिलने लाना
0: है. अरे क्यों?
1: नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता.
0: बेटी देखिए आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा. और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ.
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता.
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?
1: हाँ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSIS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: Joke.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआईएस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSI अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त आकाश, और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।